आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्हम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेर निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में।

0: एंड थैंक यू।
1: मोबाइल नंबर 0303
0: आतिक अंजुम दस्तासम डेरा मेहरबानी होता है अरजमान सिर्फ दस्तासम डेरा मनना थैंक यू जजाकल्ला
1: 30 30 704 इलाज हागा चुफर को है द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुनना ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा कतासु

14 मास रात स्टूडियो पर गड़े के अत मिनटा द पास दरी बजी दी जी बिल्कुल रागली यू भगु तास टूल ता द जुमे मुबारक इवरत ही लगना डियर जात मुबारक बाद वाई मा विसंग ही तास टूल खे भगु मुकाबले तरीडी कन रिडी ने और तास त दाव में अदगिरन न दर कोम ची द बिलडू ना कास्मड़ पाकिस्तान द कपने ओनर डॉक्टर हिदर अली मुमन देव डॉक्टर हिदर अली मुमन कम ची द पाकिस्तान डियर मारूफ मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर दे दगा डॉक्टर हिदर अली मुमन दरी गट हॉस्पिटल लरी चियो प पेखवर खार की द हिदर मुमन अस्पताल द पेखवर खार पुनुम गट अस्पताल दे यो प स्वाबई की द हिदर मुमन अस्पताल द स्वाबई पुनुम गट अस्पताल दे जी और यो प चारसदा की द हिदर मुमन मेडिकल सेंटर द चारसदी पुनुम दगा गट अस्पताल नु दे जी रासिनन ब खबर ही प बिलडो न बानी हम कहू नन ब खबर प हॉस्पिटल

लागु द प्रोग्राम स्पॉन्सर कवि बेलडोना कॉस्मेटिक स्वागता लस हेदर मोमन मेडिकल सेंटर चासदा लस हेदर मोमन होम्योपैथिजन हॉस्पिटल सभावी और प्लस हेदर मोमन अस्पताल खबर खास राशि इस्तेमाल के बेलडोना और द बेलडोना सरा तासो पख पुलो खाइस्तुनु के लगाना देर ज्यादा इजाफा रावले समायनी द बासी तलीप प्रोग्राम की सासु द पारा मुंग खुसूसी द लोई अख्तर दग गिफ्ट्स रिवडी दी पदे के मुंग सरा नगदी ना मातम दी पदे के मुंग सरा सुटु न होम दी और चिता सुसवाड़ी नंद दग मुकाबले 5000 रुपये इनाम गुरु मुंग सरा

0: ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम
1: वालेकुम। अस्सलाम
0: जी बच्चे, सो खबर है कि कम से ना
1: मेरा माल कई हम
0: हाँ मान कई ना
1: आओ
0: सो सिपारे वाले छे सो सिपारे वाले छे बच्चा मना दा तस कव यार तस रेडियो ने बंद बिया मत काल म कोई सुख छे रेडियो ने बंद है बिल्कुल काल म कोई दा हकीकत हो जदार जे मंग सस खबर माने पोई नशु मंग दा पता मुने लेके अंदाज हमरा तो निश चा काल करो द कमजे ने काल करो सी वाइल खुसा बाहर के बिया में रवानी
2: रसूल अकरम
0: यो वाले उरी दिन के प्रोग्राम की शरीक हो जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: खत्म कुरान की सुख बरखा गिस्तर वाली मुसरा خوشحال صفر 316 122 22 ختم قرآن کی سوکھ برکھا کسر واڑی موسرا سپارے والے چھ نو او دس نمبر سپارے ہوا ہے خان ہم سما

0: राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, खुक चरता द दग जवानको पवख बानी गम उनकलेशी नुप रारवान वख की दग जवान की सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम ची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा तुम चिप सलूर रजू की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। और ये वाजिदा ना द दग दानो चकम दागुन दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुमची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी। और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना पर मुकम्मल तोगबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।